विश्राम मंदिरतया तत्र सनातनो तनोर्मदीश्यं भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं प्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल भक्तिया मकरान शीलता मुक्ति नदिका नमस्कार भक्ति रथस्तपस्तुतिरखिल भगवन मंगल प्रसंग अज्ञा की मैया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाह एतस्य भगवद भक्ति